आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। जीवन में राहें उलझ जाएं और दिशा समझ ना आए तो प्रभु का नाम ही सही मार्ग दिखाता है।

0: खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में है। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
1: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: We diversified our sources.
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24

0: घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमेरिका के मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन की महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कुत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू हिस्यांग चिए और वांग ची लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द है मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China. Repolling has started in 15 booths in two constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. More details on this from our correspondent.
4: Among these, 11 are in Poshchim Mograhat and 4 booths are in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered repolling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamallu Bagchi will take up the matter today. Since vote counting scheduled for Monday, the Trinamool Congress requested an urgent hearing. Day before yesterday, Calcutta High Court Justice Krishna Rao dismissed the Trinamool Congress's petition, stating that the court cannot interfere in the Election Commission's decision on recruitment of counting personnel. In response, the party rushed to the Supreme Court. Despite today being a holiday, the Apex Court has constituted this special bench to ensure the matter is heard without delay.
5: Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
3: Field operations for house listing and housing census under phase 1 of census 2027 have commenced from yesterday in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. This follows the completion of the notified 15-day self-enumeration period in these states and union territories. More on this from our correspondent.
6: Ministry of Home Affairs said the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will undertake house-to-house visits for data collection. Meanwhile, self-enumeration facility under Census 2027 has commenced in Municipal Corporation of Delhi, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand yesterday. The online facility will remain available till 50th of this month, after which corresponding house-to-house house listing operations in these states and UTs will be conducted between May 16th to June 14th. The self-enumeration facility, introduced for the first time in Census 2027, has received an encouraging response from the public. As part of the digital approach adopted for Census 2027, so far around 82 lakh households have successfully availed the facility through the official portal sc.census.gov.in. The initiative marks a significant milestone in digitizing census operations and has been widely appreciated for offering flexibility, convenience and ease of participation. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
3: Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier as part of efforts to strengthen energy security during the global energy crisis. While speaking at the Vibrant Gujarat Regional Conference in South Gujarat, he said long-term planning played a key role in managing the crisis. On boosting domestic production, the minister said orders were issued to maximize LPG yield at refineries and the domestic production has been increased by 60%.
7: We diversified our sources. Crude sourcing has now expanded from 27 countries to 41. We started procuring LPG, that is cylinder gas, from US and Norway, Algeria, apart from the Middle East. India has moved with great speed. Orders were issued to maximize LPG yield at refineries. And we increased our domestic production by 60%. We are incentivizing the movement to natural gas. Operation Urja Suraksha was a coordinated response across companies, ministries, state governments and international suppliers. Maximum vessels of India carrying LPG came out of the Hormuz.
3: The Reserve Bank of India has said that 98.47% of the 2000 rupees denomination bank notes in circulation have been returned nearly 3 years after it announced their withdrawal. The central bank had declared the withdrawal of 2000 rupees notes from circulation on May 19, 2023 as part of its currency management exercise. The RBI, however, clarified that despite their withdrawal and return, the 2000 rupees bank notes continue to remain legal tender.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना

0: पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की उपस्थिति में मत पत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाले लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
3: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
4: वी डाइवर्सिफाइड आवर सोर्सेज
5: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद

0: अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान

शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार, कहा अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी, दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ಇದು ಎಫ್ ಎಂ ರೇನ್ಬೋ ಕನ್ನಡ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್. ಸಮಯ 8:44:40 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 8:45 ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಚಾರ ಸಂಧ್ಯ, ತದನಂತರ 9:00 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಬರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ 9:15 ಸುಕೂನ್ ಕಿ ಪಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा. मुख्य समाचार. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े. पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की. सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया. छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त. लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त. और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. और अब समाचार विस्तार से. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया. मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए. इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ.
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा. चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था. इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे. पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी. असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था. तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया. कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा.
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है. मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं. राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था. मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी.
3: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया. 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है. करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया. इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8,52,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे. कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है. हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
4: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र CDOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: Part C dot.

0: की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस C-DOT की संस्था के द्वारा सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित कर दी देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
2: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि ये क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
1: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
4: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड़ और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
5: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उनको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं, 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे देश प्रदेश में 390,000 गणना ब्लॉक बने।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े जबकि पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर एक आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त हुए और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Nearly 90% voter turnout recorded in re-polling at 15 booths of 2 assembly constituencies of West Bengal. Counting of votes on Monday for assembly polls in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and Puducherry. Election Commission deploys additional counting observers and police observers in West Bengal. Government launches cell broadcast system to strengthen India's emergency communication systems and enhance public safety infrastructure. 4 security personnel killed in an IED blast near Kanker Narayanpur district border in Chhattisgarh. Renowned lyricist Prasoon Joshi appointed as chairman of Prasar Bharati. And in cricket, BCCI announces Indian squad led by Harmanpreet Kaur for ICC Women's T20 World Cup. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Mograghat, Postim constituency and four in Diamond Harbour seat. Repolling remained largely peaceful across the two assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal, covering 152 seats, was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of vote counting. In Tamil Nadu, preparations are in full swing for the counting of votes for assembly elections to be held on Monday. More from our correspondent.
7: The Election Commission held a training on the counting procedures for returning officers, micro-observers, assistant returning officers, supervisors and assistants. Over 10 lakh postal voters, including those on electoral duties and also those aged above 85 years of age, have cast their votes. The state has created a historic record to an out of 85.10% according to the Election Commission without any untoward incident. Karur Assembly constituency not only had a maximum of 79 contestants but also recorded a maximum of 89% votes, the highest in the state. The constituency has a total electorate of 8,52,690 voters choosing the winner. On the whole, a total of 5,73,43,291 voters exercised their franchise in 75,064 polling stations in the state. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
6: The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jamala Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. Defence Minister Rajnath Singh today said the valour of the country's armed forces is not confined to the battlefield, as they also provide assistance to people during calamities. Mr. Singh was speaking at an event in New Delhi organised ahead of the first anniversary of Operation Sindoor. The Defence Minister said the unmatched valour of soldiers has made Operation Sindoor a golden chapter in India's military history. Mr. Singh also commended the dedication and patriotism of the armed forces, noting that their ethos of nation first, service before self, continues to define India's military traditions from ancient times to present day operations. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back here with us on the news at 9. Communications Minister Jyotiraditya Scindia today launched the Cell Broadcast System, CBS, to strengthen India's emergency communication systems and enhance public safety infrastructure. A nationwide test of the system was successfully conducted today, during which emergency alert messages were broadcast to mobile phones. Speaking at the launch in New Delhi, the minister called it a transformative step in India's disaster management framework, reflecting the shift from a reactive to a proactive approach in safeguarding citizens. Our correspondent reports, pan-India trials of the CBS have been successfully completed, with training conducted across all states and union territories.
8: Cell Broadcast System, CBS, offers

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11:05 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका अपना अजीज दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और गीत मेरे मनमीत में हम आपके लिए लेकर आते हैं गोल्डन एरा यानी सुनहरे दौर के उन नगमों को जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। ये वो नगमे हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। तो आइए आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ। ये फिल्म जिसका नाम है आवारा। ये फिल्म आई थी 1951 में। राज कपूर साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसका निर्माण भी खुद राज कपूर साहब ने किया था और इस फिल्म को लिखा था ख्वाजा अहमद अब्बास ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, नरगिस, लीला चटनीस, केएन सिंह और शशि कपूर। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में आपके

फिल्म का ये नगमा था और आवाज थी मुकेश साहब की। बेहद खूबसूरत यह फिल्म है और यह फिल्म आई थी 1951 में। अगर सुने दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गोल्डन एरा के उन रोमांटिक गीतों को लेकर हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये वो दौर था जब हमारे पास इतनी तकनीक नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी हमारे उन महान कलाकारों ने, उन महान फिल्म मेकर्स ने ऐसी फिल्में बना दी जो हमेशा के लिए यादगार रह गई। सिर्फ यादगार ही नहीं बल्कि ये फिल्में अमर हो गई। उसी श्रेणी में एक और फिल्म आई थी 1952 में और वो फिल्म थी आन। महबूब खान साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसका निर्माण भी खुद महबूब खान ने किया था और इसको लिखा था एस अली रजा ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में दिलीप कुमार, निमी, नादिरा, प्रेमनाथ वगैरह ने बहुत ही अहम किरदार निभाया था। यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी फिल्म थी, अपने दौर की बहुत ही कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म के गीतों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माया भी गया और गायकों ने बहुत ही खूबसूरत अपनी आवाज़ें भी बख्शी, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, शमशाद बेगम और भी बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म के गीतों को गाया है। उन्हीं में से एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसको लिखा है शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है नौशाद साहब ने। तो आइए आन फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:22 और 48 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीतों की, गीत मेरे मनमीत। और गीत मेरे मनमीत में हम आपके लिए लेकर आते हैं गोल्डन एरा यानी सुनहरे दौर के उन नगमों को जो हम सब के दिल के बेहद करीब है और बहुत ही पसंदीदा नगमे होते हैं। इन नगमों को सुनने के बाद एक अलग सा सुकून हम सब के दिलो दिमाग में छा जाता है और कोशिश ये होती है कि हम इन नगमों को बार बार सुनते रहें, गुनगुनाते रहें। ऐसा ही एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म बूट पॉलिश से। यह फिल्म आई थी 1954 में। इस फिल्म के निर्देशक थे प्रकाश अरोड़ा और इस फिल्म को राज कपूर साहब ने बनाया था या उनके निर्माण में बनी थी यह फिल्म। और इस फिल्म में जिन लोगों ने अभिनय दिखाए थे वो थे रतन कुमार, नाज, डेविड चंद बर्क, बोधो आडवाणी और खुद राज कपूर साहब ने। खास बात यह है कि इस फिल्म के गीतकार शैलेंद्र ने एक नेत्रहीन गायक के रूप में चली कौन से देश गाना भी गाया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और साथ ही साथ हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। इसी फिल्म का यह नगमा बूट पॉलिश का यह नगमा आशा भोसले जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में खास तौर से आपके लिए

0: बढ़ता चल बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:33 और 4 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के यानी गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। ये वो नगमे हैं जिन्हें बार बार आप सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, और कई बार आप इन्हें देखना भी चाहते हैं। तो उस दौर के जो नगमे हैं यानी 1947 से लेकर के 1965 के आसपास के जो नगमे हैं, जो फिल्में हैं, बेहद खूबसूरत फिल्में, और माइलस्टोन ये मूवी थी, वो तमाम फिल्में जो उस दौर में बनी, आज भी हम उन्हें जब भी देखते हैं तो हमें उस दौर में लेकर चले जाते हैं जब सब कुछ बिल्कुल नया नया था। उसी दौर में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था CID, और ये फिल्म आई थी 1956 में। राज खोसला साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म में, इस फिल्म को लिखा था इंद्रराज आनंद ने, और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में देवानंद, शकीला, वहीदा रहमान, केन सिंह, जॉनी वॉकर, और साथी कलाकारों में कुमकुम, महमूद, मीनू मुमताज, टुनटुन, दिलराज, जगदीश वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और जान निसार अख्तर साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था ओपी नैयर साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

फिल्म नया दौर का यह नगमा था मोहम्मद रफ़ी साहब आशा भोसले जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, और यह फिल्म आई थी 1957 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और सदाबहार गीतों के साथ हम हाजिर हैं। गोल्डन एरा के नगमों में हम आपके लिए उन नगमों को चुनकर लाते हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, और कई बार आप झूमने भी लगते हैं इन नगमों को सुनकर। उन्हीं नगमों में से ये नगमा था नया दौर का, जिस पर यकीनन आपने ज़रूर झूमना शुरू कर दिया होगा। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और गीत मेरे मनमीत के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ। और ये फिल्म है 1963 में आई मेरे महबूब के नगमे से हमने लिया है ये नगमा, और जिसके निर्देशक थे एस रवेल साहब, जिसका निर्माण भी खुद उन्होंने ही किया था, यानी HS रवेल साहब ने ही किया था। इस फिल्म के गीतों को बहुत ही खूबसूरती से लिखा था शकील बदायूनी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था नौशाद साहब ने। और इस फिल्म में जिन लोगों ने मुख्य किरदार निभाया था उनमें राजेंद्र कुमार, साधना, निमी, अशोक कुमार, प्राण, जॉनी वॉकर, अमिता, मुमताज़ बेगम और मलाइका वगैरह ने बहुत ही अहम और खूबसूरत किरदार निभाया था। इसी फिल्म का एक नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं लता जी की आवाज़ में, और इसको लिखा है शकील बदायूनी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है नौशाद साहब ने।

फिल्म आज और कल की इसी कव्वाली के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। 24 पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमाल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के चार जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम बट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। मणिपुर में इम्फाल उखरुल मार्ग पर कुछ अज्ञात हथियारबंद उपद्रवियों ने राहगीरों पर गोलीबारी की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई और सामान्य यातायात बाधित हो गया। ये घटना उखरुल जिले के लिल्टन पुलिस थाना के अंतर्गत न्यू हेवन और टीएम कसोम क्षेत्र में हुई। घटना का समाचार मिलने तक किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Pargana district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of vote counting. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joymala Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Dr. R. Balasubramaniam and

AIRFM Gold 100.1 MHz पर मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती और अब जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपका पसंदीदा पानी पर लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं मंजू बत्रा की लिखी कहानी उजाले की ओर। दोस्तों, कुछ लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं, वो अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचते हैं, लाचार और बेबस लोगों की मदद करना चाहते हैं। जब वो काम करने निकलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी इस मुहिम में कुछ और लोग भी अपने आप हाथ लगा देते हैं और तभी मिल पाता है उजाला। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की जिसको सुना रही है मंजू बत्रा और ये कहानी भी उन्हीं की कलम से, तो आइए सुनते हैं। एक बात और कह दूं, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है या कुछ और कहना चाहते

0: इस कहानी के बारे में तो हमें जरूर मैसेज करें व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप सभी को मालूम है, fmgoldaird@gmail.com। दोस्तों, हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। आपके संदेश हमें अगली कहानी को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: रेलवे स्टेशन पर धक्का मुक्की और शोरगुल के बीच गरिमा दौड़ती भागती प्लेटफॉर्म पर दाखिल होती है। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी, इस इंटरनेट पैक को भी आज ही खत्म होना था। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, सुबह से ही इतनी हड़बड़ी में रही कि मोबाइल रिचार्ज करने का ना तो मुझे ख्याल रहा और ना ही वक्त। मैंने ट्रेन की लाइव लोकेशन भी चेक नहीं की। कोई मेरे जितना लापरवाह कैसे हो सकता है। गरिमा ने ध्यान से प्लेटफॉर्म पर होने वाली अनाउंसमेंट को सुना।
2: कृपया ध्यान दीजिए, 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते।
1: अनाउंसमेंट हो रही थी, चेन्नई एक्सप्रेस अपने तय समय से ठंड और कोहरे की वजह से 4 घंटे देरी से है। 4 घंटे इंतजार, गरिमा का दिल बैठ गया। वो बेमन से सामान की ट्रॉली और अपने शरीर को खींचते हुए वेटिंग रूम के बारे में पता करने लगी। मैम, यहाँ 2 तरह के वेटिंग रूम हैं, नॉन एसी और एसी। आप कौन सा वाला लेंगी? अच्छा, ये बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? फैसिलिटी और सर्विस का डिफरेंस है मैम। अच्छा अच्छा, ऐसा करो मुझे एक एसी वेटिंग रूम का टिकट दे दो। अच्छा मैम। टिकट लेने के बाद गरिमा मन ही मन सोचने लगी, यात्राएं तो महंगी सस्ती होती हैं, पर इंतजार भी महंगा और सस्ता होता है। इस बात पर तो उसने कभी गौर ही नहीं किया। वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। एसी वेटिंग रूम का टिकट अपने पॉकेट में रखकर गरिमा प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आसपास नजरें दौड़ाने लगी। प्लेटफॉर्म पर कोने में एक फकीर और उसकी बेटी गाना गा रहे थे।

रेलवे स्टेशन पर मध्यम रोशनी है, ऐसी रोशनी कि जिसे ना तो उजाला कहा जा सकता है और ना ही ऐसी ओझलता कि जिसे अंधेरा ही कह दिया जाए। रेलवे लाइन आपस में कितनी टकराती हैं, पर मजाल है किसी ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को रास्ता ना दिया हो। गरिमा ठंड से कांप रही थी, दिसंबर की ठंड उछल कर जनवरी के महीने में कूद आई थी। ऐसा लग रहा था मानो ठंड ने कोहरे को अपने बच्चे की तरह गोद में बिठा रखा हो। प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे स्टॉल पर नए साल के बीत जाने के बाद भी ग्रीटिंग कार्ड किसी के इंतजार में सांसें भर रहे थे। इस बार गरिमा जल्दबाजी में कोई नॉवेल अपने साथ रखना भूल गई है और ऊपर से 4 घंटे का इंतजार, अब वो क्या करे। गरिमा मन ही मन सोचती है कि उसने हमेशा ही दौड़ती ट्रेन में ठहरे जीवन के फलसफों को नॉवेल में पढ़ा है, तो क्यों ना इस बार ठहरे हुए वक्त में अपनी जिंदगी की रफ्तार को लिख लिया जाए। यही सोचकर गरिमा ने स्टॉल से एक ग्रीटिंग कार्ड खरीद लिया। ग्रीटिंग कार्ड लेकर गरिमा वेटिंग रूम में आ जाती है और कोने में रखी टेबल कुर्सी पर बैठकर ग्रीटिंग कार्ड लिखने लगी। लिखते हुए वो सोचती है उसके पास वक्त भी निर्धारित है और स्पेस भी। ग्रीटिंग कार्ड के सिर्फ 2 पेज और इंतजार के 4 घंटे, सिर्फ इस टाइम और स्पेस में उसे अपनी बात खत्म करनी होगी। इसलिए गरिमा ज्यादा स्मृतियों में ना जाकर पिछले दिसंबर के महीने में खुद को उतार देती है। हाँ, दिसंबर के ठंड के दिन ही थे जब उसकी डॉक्टर कार्तिक से मुलाकात हुई थी। डॉक्टर कार्तिक 2 गली छोड़कर गरिमा के फ्लैट के सामने वाले बंगले में रहते हैं। डॉक्टर कार्तिक ने पूरे बंगले को ही हॉस्पिटल बना रखा है। बेसमेंट में मरीजों को एडमिट करने का अरेंजमेंट है। फर्स्ट फ्लोर पर रूटीन चेकअप के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सेकंड फ्लोर ही है जहां पर दवाइयों की स्मेल नहीं आती और वो है उनका बेडरूम। एक दिन गरिमा एक बच्चे का इलाज कराने डॉक्टर कार्तिक के घर गई। क्या हुआ इन्हें? पैर में हल्की सी मूंछ है डॉक्टर। क्या कर रहे थे नन्हे जनाब कि आपके पैर में मूंछ आ गई? विभू डर के मारे गरिमा की तरफ देखता है और गरिमा डॉक्टर को जवाब देती है, कुछ नहीं डॉक्टर, कल रात रजाई में बैठकर शक्तिमान देखते रहे और सुबह मुंह से स्मोक धुआं निकाल निकाल कर अपने दुश्मनों को मारते फिर रहे थे और फिर भी तमराज किलविश नहीं मरे तो छत पर जाकर शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान बोलकर गोल गोल घूमकर सीधा टेरेस से बालकनी में आ गिरे हैं और नतीजा आपके सामने हाजिर है। डॉक्टर कार्तिक और गरिमा दोनों विभू के बालमन पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे देखकर विभू शर्मा जाता है और गरिमा को जोर से पकड़ लेता है। गरिमा के जाने के बाद डॉक्टर कार्तिक गरिमा की पर्सनैलिटी और बिहेवियर से बड़ा खुश होते हैं, पर डॉक्टर कार्तिक समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी कम उम्र लड़की का बच्चा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो अपने नौकर मनोहर से पूछते हैं, कौन थी मैडम? साहब प्रोफेसर है, अनाथ बच्चों को पालती है। सामने वाली बिल्डिंग में पूरे 2 फ्लैट पर कब्जा किया हुआ इसने, ना जाने कहां से किस किस को उठा लाती है। कभी भी कहीं से भी कोई भी जख्मी कुत्ता उठा लाती है, फिर उसकी मरहम पट्टी करती है, खाना खिलाती है, ठंड में कपड़े पहनाती है, गरीब बच्चों को पेंसिल किताबें बांटती फिरती है। अभी पिछले संडे कॉलोनी के पीछे वाले पार्क में लोगों के सामने भाषण दे रही थी और बोल रही थी कि सभी अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजें, सरकारी स्कूल में शिक्षा और खाना बिल्कुल मुफ्त मिलता है। पूरी बिल्डिंग के नाक में दम कर रखा है साहब इसने। साहब खुद का कोई घर परिवार तो है नहीं, इसलिए अनाथों को पालती फिरती है। घर गृहस्थी की कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, शादी तो की नहीं इसने। क्या कहना चाहते हो तुम? शादी तो मेरी भी नहीं हुई। साहब आपकी बात अलग है। कैसे अलग है? डॉक्टर कार्तिक ने चश्मे को टेबल पर रखते हुए पूछा। वो हमें नहीं मालूम साहब, लेकिन आप इन मैडम से बहुत बेहतर हैं। और हाँ,

इन मैडम से थोड़ा दूर ही रहिए। लोगों से कपड़े मांगती फिरती है, कभी कुत्तों के लिए खाना मांगती है, कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। छोड़िए साहब, आप भी क्या बात लेकर बैठ गए, मैंने खाना लगा दिया है, आइए खाना खाते हैं। डॉक्टर कार्तिक को मनोहर की बातों में एक संकीर्णता नजर आई और वो पूरी रात

एक दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान कॉलोनी के पार्क में डॉक्टर कार्तिक को गरिमा नजर आती है। उनके कदम ना चाहते हुए भी गरिमा की ओर खींचे चले आते हैं। गुड मॉर्निंग गरिमा जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर कार्तिक, आप कैसी तबीयत है नन्हे शक्तिमान की? अच्छा है, मैंने सुना है बहुत बड़ा परिवार है आपका। जी हाँ, पूरे 16 बच्चे और 18 स्ट्रीट डॉग्स की माँ हूँ मैं। और एक हमें देखिए, पूरे घर में एन मीन तीन लोग भी नहीं। अच्छा गरिमा जी, मैं चलता हूँ। मॉर्निंग वॉक पर रोज ही डॉक्टर कार्तिक और गरिमा अपनी दिनचर्या को लेकर अक्सर बातें करने लगे। एक दिन डॉक्टर कार्तिक गरिमा को अपने घर पर चाय के लिए इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि उनका एक दोस्त कल शाम उनसे मिलने अमेरिका से आ रहा है और कल शाम का वक्त वो उनके और उनके फ्रेंड के साथ बिताए तो उन्हें अच्छा लगेगा। गरिमा भी हाँ कह देती है। डॉक्टर कार्तिक केतली से कप में चाय डालते हुए कहते हैं, गरिमा जी इनसे मिलिए, ये हैं अंकुर सक्सेना। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हमने साथ साथ स्कूलिंग की, कॉलेज भी साथ गए और फिर हम दोनों हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। मैं MBBS करके लौट आया पर अंग्रेजी जर्नलिज्म ने इसके पैर बांध दिए और ये वहीं सेटल हो गया। आजकल ये अमेरिका की किसी न्यूज़ एजेंसी में सीनियर जर्नलिस्ट है। और अंकुर, अब इनसे मिलिए, ये हैं प्रोफेसर गरिमा, ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। तुम्हें मालूम है कितनी बड़ी फैमिली है इनकी? पूरे 16 बच्चे और 18 डॉग्स की माँ है ये। डॉक्टर कार्तिक, मैं तो इस फैमिली को और भी बड़ा करना चाहती हूँ पर मैं करूँ क्या? मैं तो अपने आप को इस मामले में बहुत बेबस और लाचार समझती हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ वो बच्चे हैं जिनका इस संसार में कोई नहीं है, जो पूरी तरह से अनाथ हैं, जो चाय की दुकानों पर, ढाबों पर लोगों की जूठन धोते हैं, जो रेड लाइट रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं, नाम के नाम पर, पहचान के नाम पर, जिनके हिस्से में छोटू गुड्डू जैसे शब्द ही आ पाते हैं। आपको मालूम है, जब मैं इनके शरीर पर स्कूल यूनिफॉर्म देखती हूँ, कंधों पर स्कूल बैग, हाथों में रंगीन किताबें देखती हूँ, स्कूल जाते इनके नन्हे नन्हे कदमों की आहट सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी बौनी हो गई हो, मानो इन कदमों ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया हो। मेरे भीतर की इस माँ को समझा है कभी किसी ने? मैं चाहती भी नहीं कि लोग मुझे समझें, पर मुझे वो ना समझें जो मैं नहीं हूँ। मेरी सैलरी से मैं बस इतने ही अनाथ बच्चों को पाल पाती हूँ। जब कोई अनाथ बच्चा मेरे दरवाजे से बिना शरण लौट जाता है, मैं समझा नहीं सकती मेरा दिल कितने टुकड़ों में फट जाता है। क्या महसूस किया है आपने कभी ऐसी माँ के कलेजे को?

लंबी और गहरी सांस भरते हुए अंकुर ने गरिमा से कहा, तो आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स क्यों नहीं लिखती? बहुत सी एनजीओज हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। मेरी कलम घिस गई है आर्टिकल लिखते लिखते। और आर्टिकल ही क्यों, मैंने तो कई कॉन्फ्रेंसेस में लंबे लंबे भाषण भी दिए हैं, पर मुझे कहीं से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। आई एम स्टिल हेल्पलेस मिस्टर अंकुर, आई एम स्टिल हेल्पलेस। मैं आज भी बेसहारा हूँ, मैं आज भी बेबस हूँ। गरिमा डॉक्टर कार्तिक और मिस्टर अंकुर के चेहरों की तरफ देखती है और कहती है, आई एम सॉरी डॉक्टर कार्तिक, मैं भावनाओं में बह गई थी, इस खुशी के मौके पर न जाने क्या उठपटांग बात लेकर बैठ गई। अच्छा डॉक्टर कार्तिक, मुझे इजाजत दीजिए, मेरे बच्चों का डिनर का वक्त हो गया है, मुझे खाना बनाना है। क्या मेड नहीं रखी आपने? मेड नौकर रखने का मतलब है मेरे एक बच्चे की एजुकेशन का खत्म हो जाना। नाइस टू मीट यू मिस्टर अंकुर, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लिसन गरिमा जी, ये मेरा कार्ड है, आप इस पर मुझे अपने आर्टिकल्स भेजिएगा।

0: पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुए गरिमा नोटिस करती है पिछले 3 दिनों से डॉक्टर कार्तिक मॉर्निंग वॉक पर नहीं आए हैं। गरिमा सोच में पड़ जाती है कि कहीं उस दिन चाय पर उनके दोस्त के सामने वो कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई थी। उसका मन बेचैन हो उठता है और वो शाम को डॉक्टर कार्तिक के घर जाती है। डॉक्टर कार्तिक अपने अंधेरे कमरे में लेटे हुए हैं। डॉक्टर कार्तिक कौन? गरिमा जी। जी हाँ, क्या हुआ आपको? आजकल आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं आते।
1: कुछ नहीं,
0: थोड़ी तबीयत खराब है। डॉक्टर होकर आप भी बीमार हो गए? यही तो गलत फहमी है आप लोगों की कि डॉक्टर बीमार नहीं हो सकते। डॉक्टर्स का दिल धड़कना बंद नहीं करता। हम डॉक्टर को भी कई बार दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो फिर आपने किसे बुलाया अपने इलाज के लिए? डॉक्टर साहिबा आज खुद ही चली आई हमारी बीमारी पूछने। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर कार्तिक?
1: नहीं,
0: मैं कहना नहीं, समझाना चाहता हूँ।
1: क्या?
0: यही कि आपसे मिलने से पहले मेरी सोच कितनी सीमित थी। मुझे ऐसा लगता था कि गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके मैं कोई बहुत महान काम कर रहा हूँ। और कई जगहों पर तो मैंने ये भी कहा कि मैं लोगों की मदद करने में इतना मसरूफ हूँ कि मुझे शादी करने का भी वक्त नहीं मिला। शादी ना करना मेरे लिए ऐसा त्याग रहा जो मैं समाज पर उधार की तरह वसूलता रहा। पर उस दिन जब मैंने आपको सुना तो लगा एक ऐसा इंसान जिसने अपना सब कुछ लोगों में बांट दिया और फिर भी अपने आप को कितना बेबस और लाचार समझती है। गरिमा जी, मेरा दिल आपकी तरह तो नहीं है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ। मुझे अपना ये बड़ा

0: घर अब तहखाना सा लगता है। आप बुरा ना माने तो अपने नए बच्चों को यहाँ जगह दे सकती हैं। आपको पता है गरिमा जी, मुझे अभी तक जिंदगी से यही शिकायत रही कि मुझे मुझ जैसा कोई सोलमेट क्यों नहीं मिला, पर आपसे मिलने के बाद मेरी शिकायत भी खत्म हो गई। गरिमा जी, मैं आप पर कोई हक नहीं चाहता, आपका साथ चाहता हूँ। आप एक और अनाथ को अपने परिवार में शामिल कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए डॉक्टर कार्तिक, आप मुझे बेबस और लाचार समझने की भूल ना ही करें तो बेहतर है। क्या कहा? बेबस और लाचार? और नहीं तो क्या। खूब समझती हूँ मैं आप जैसे पुरुषों को, जिन्हें बौद्धिक और आत्मनिर्भर महिलाएं आकर्षित तो करती हैं, पर वो सिर्फ उन्हें घर की चार दीवारी के खूंटे में ही बांधना चाहते हैं। गरिमा, मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे दिल की तरह तुम्हारा दिमाग भी विशाल है, लेकिन मैं गलत हूँ। तुम बहुत ही आत्मकेंद्रित महिला हो। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन लूंगा? विचारों के स्तर पर बहुत बौनी हो तुम, जो अनाथ बच्चों की सेवा पर सिर्फ अपना अधिकार समझती है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सेल्फ ओरिएंटेड के साथ साथ लालची भी हो। डॉक्टर कार्तिक, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लालची और आत्मकेंद्रित कहने की? मैंने तो सही को सही और गलत को गलत कहा है। अब समझ आता है कि क्यों तुम्हारा सच, जो जायज है, व्यक्तिगत स्तर पर सिमट कर रह गया है। शट अप डॉक्टर कार्तिक, शट अप डॉक्टर कार्तिक, कहकर वो डॉक्टर कार्तिक के घर से लौट आई थी। ऐसा लग रहा था ग्रीटिंग कार्ड ने भी उसे शट अप कह दिया था। ग्रीटिंग कार्ड के पन्ने खत्म हो गए थे। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे और वक्त ने भी उसे स्टैचू बोल दिया था।
1: कृपया ध्यान दीजिए, 12,600
0: प्लेटफॉर्म पर चेन्नई एक्सप्रेस के खड़े होने की लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी। गरिमा का वक्त और स्पेस खत्म हो चुका था, पर कहानी अभी अधूरी थी। एक हाथ में ग्रीटिंग कार्ड और दूसरे हाथ में टिकट, गरिमा अपने विकल्प के मझधार में फंस जाती है। ग्रीटिंग कार्ड उसे उसके प्यार तक ले जा सकता है और टिकट उसे उसकी मंजिल की ओर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गरिमा बहुत सोचने के बाद प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगती है और अपने लिखे हुए ग्रीटिंग कार्ड को डस्टबिन में फेंकने लगती है, पर वो देखती है कि डस्टबिन में बहुत से ग्रीटिंग कार्ड के टुकड़े पहले से मौजूद हैं। उसे लगता है कि शायद किसी ने अपनी रेल की टिकट को नहीं फाड़ा है, इसलिए ये मोहब्बत के परचम डस्टबिन में अभी भी किसी के इंतजार में सांसें भर रहे हैं। गरिमा अपने रेल टिकट के टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में ग्रीटिंग कार्ड के कचरे पर फूल की तरह बिखरा देती है और दौड़ती हुई रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर एक

टैक्सी में बैठी गरिमा को याद आता है कि जिस दिन उसका और डॉक्टर कार्तिक का झगड़ा हुआ था, तब से डॉक्टर कार्तिक मॉर्निंग वॉक पर नहीं आए हैं। उनके घर के बाहर मरीजों की भीड़ भी नहीं दिखी। कल दोपहर को लंच के बाद उसने सेकंड फ्लोर से डॉक्टर कार्तिक की खिड़की की ओर देखा तो विंडो पर काले पर्दे लगे हुए थे। ओ माय गॉड, ये क्या किया मैंने, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। सच ही तो कहा था डॉक्टर कार्तिक ने कि मैं बहुत आत्मकेंद्रित हूं। गरिमा डॉक्टर कार्तिक के घर पहुंचकर डोरबेल बजाती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दरवाजा ना खुलने पर गरिमा जोर जोर से दरवाजा पीटती है। दरवाजा खोलो कार्तिक, ओपन द डोर। तुम सही थे कार्तिक, मैं अपने बच्चों के प्यार में बहुत लालची हो गई थी, जिसने आपके प्यार की गहराई को नहीं समझा। सही कहा था डॉक्टर कार्तिक आपने, अगर तुम्हारा साथ रहेगा तो अंधेरे में भी रोशनी खिल जाएगी। वी लव यू कार्तिक, वी ऑल लव यू।

थोड़ी देर बाद गेट खुलने की आवाज़ आती है। गेट पर कार्तिक खड़े हैं। गरिमा तुरंत डॉक्टर कार्तिक के गले लग जाती है और बहुत

0: रोती है। कार्तिक गरिमा का हाथ पकड़कर अंदर लाता है। बहुत ठंड है बाहर। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। तो चेन्नई एक्सप्रेस की टिकट फाड़ ही दी तुमने, चाय का कप थमाते हुए कार्तिक ने कहा। गरिमा शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। मुझे मालूम था कि तुम जरूर लौटोगी, कल शाम को कॉन्फ्रेंस है ना तुम्हारी। देखो मैंने आज दोपहर की 2 AA टिकट चेन्नई के लिए पहले से ही बुक की हुई है। तभी कार्तिक का मोबाइल रिंग करता है। हेलो कार्तिक, मैं अंकुर बोल रहा हूँ। सुन, प्रोफेसर गरिमा को कांग्रेस कह देना। कार्तिक अपने मोबाइल का लाउडस्पीकर ऑन कर देता है। क्यों कांग्रेस कह दूं गरिमा जी को? अरे उनके आर्टिकल्स ने हंगामा मचा दिया है। मैंने उनके आर्टिकल्स का एक कोलाज बनाया था और वो स्टोरी इतनी हिट हुई कि एक बहुत बड़ी चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन उनके साथ काम करना चाहती है और एक डॉक्यूमेंट्री कंपनी उनके बच्चों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाना चाहती है। और तुझे पता है सबसे खास बात क्या है? क्या है कि वो सभी भारत में रहकर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सच कहूं कार्तिक, मैं भी विदेश में रहकर थक गया हूं। मुझे भी अपने देश की मिट्टी बुलाती है। मैं भी अपने देश के लिए काम करना चाहता हूं। मैं भी अपने देश के लिए लिखना चाहता हूं। अच्छा सुन, मैं मीटिंग में हूं, मैं तुझसे और गरिमा जी से बाद में डिटेल में बात करता हूं। कार्तिक और गरिमा दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। कार्तिक एयर टिकट्स की ओर इशारा करके कहते हैं, हम इनका क्या करूं? गरिमा टिकट्स को कार्तिक से छीनकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है और कार्तिक के गले लग जाती है। मन ही मन बुदबुदा रही थी, सभी ने आधी रात के बाद होने वाले उजाले को पा लिया है। मिस्टर अंकुर को अपना देश मिल गया, डॉक्टर कार्तिक को उनका प्यार, गरिमा के बच्चों को उनका पिता और गरिमा को अपने हिस्से के और नए बच्चे। दोस्तों, कुछ लोग सूरज की तरह होते हैं जिनका उद्देश्य होता है लोगों के जीवन में उजाला फैलाना। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति है रश्मि कुकरीति की। मंजू बत्रा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: तो दोस्तों, अभी आपने ये कहानी सुनी, मंजू बत्रा की लिखी, उन्हीं की जुबानी, उजाले की ओर। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है FM Gold AIR Delhi @gmail.com।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे पानी पर लिखी कहानी। बेहद प्यारी सी ये कहानी सुनकर हर किसी को बहुत ही प्रेरणा मिलती है, लोग मोटिवेट होते हैं और इसी तरह हर किसी की मदद करते हैं। मैं हूं श्रेयशि और पानी पर लिखी कहानी के बाद अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कुछ प्यारे से नगमे के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि फलता विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को हुए मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना क्षेत्र कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय मौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी।

नजराना लेकर हाजिर हूँ मैं श्रेयसी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने और संग हूँ मैं श्रेयसी इस गाने के नजराने के साथ। तो इसी तरह हम अपने इस गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और फिर छेड़ते हैं वो रात गीतों वाली।

वो कहते हैं ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है।

सुना दोस्तों, अक्षय भोसले की आवाज में बोल सजाए गुलजार ने और म्यूजिक दिया आरडी बर्मन साहब ने। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने संग, हूं मैं श्रेयसी और पूरी कोशिश है कि आपको एक से एक प्यारे सुहाने गीतों का संकलन यहां मिल सके। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ।

देश परदेश फिल्म से ये गीत हमने लिया दोस्तों, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल सजाए अमित खन्ना ने और संगीत दिया राजेश रोशन ने। जब हम बात करते हैं किसी प्यारे, किसी बड़े ही दिल को छू जाने वाले नगमे की, तो कहीं ना कहीं वो नगमा हमारे किसी पुरानी यादों के झरोखों से होकर गुजर जाता है और फिर बस दिल यूं ही कह उठता है, बेखुदी कहाँ ले गई हमको, बेखुदी कहाँ ले गई हमको, देर से इंतजार है अपना, रोते फिरते हैं सारी सारी रात, अब यही रोजगार है अपना। बढ़ते हैं अब हम इस अगले गीत की तरफ। फिल्म साथ साथ से ये गीत लिया हमने, आवाज है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, बोल सजाए जावेद अख्तर ने और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने।

प्यार मोहब्बत जब अपना सही रूप ले लेता है, जब प्यारा सा दिल एक सही नाम पे आ जाता है, एक सही पहचान में आ जाता है, तो एक प्यारा सा घर यूं ही बसता जाता है। बिक जाते हैं यहां चंद सिक्कों के लिए लोग, बिक जाते हैं यहां चंद सिक्कों के लिए लोग, चीखता हुआ उनका जमीर देखता रहता है। तख्त पे बैठा हुआ वो मीर, तख्त पे बैठा हुआ वो मीर, रोज रहता है परेशान, रोज झूमता हुआ एक मस्त फकीर देखता रहता है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म हीरा पन्ना से ये नगमा हमने सुना। बोल सजाए थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन साहब ने। आनंद बख्शी जी का ही एक और प्यारा सा गीत मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। फिल्म सुहाग का ये गीत है। बोल आवाजें हैं शैलेंद्र, आशा भोसले और रफी साहब की, और गीत संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म उमराव जान से ये गीत अभी आपने सुना दोस्तों, आशा भोसले की आवाज़, खयाम के सजाया संगीत और बोल शहरयार के। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, संग हूं मैं श्रेयसी, और गीतों का सिलसिला एफएम गोल्ड पर यूं ही जारी है।

और इस गीत के साथ दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने को हमें देना होगा विराम। जल्द आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के पार फिर से मैं श्रेयसी जुड़ूंगी आपके साथ। धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक बूथ भी शामिल है उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि ये फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए देखा गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमाल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालासुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। स्नातक चिकित्सा

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल कार्यक्रम रात सुरमई लेकर आपके संग हूं मैं श्रेयशी। तो आइए इस रात को बेहतरीन बनाएं कुछ बेहतरीन गीतों के संग। शुरुआत करते हैं हम इस गीत से, फिल्म मन मंदिर का ये नगमा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। बोल सजाए हैं राजेंद्र किशन ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गीत भी कितने अजीब होते हैं ना। कुछ गीत हमें किसी यादों में ले जाते हैं तो कुछ गीत हमें फ्यूचर प्लानिंग में लगा देते हैं। इसी तरह से कई सारे गीत हमें किसी के करीब भी होने का एहसास कराते हैं। कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं और कभी अजनबी भी अपने से करीब लगते हैं। जिंदगी की यही सबसे अजीब सच्चाई है, रिश्ते खून से नहीं एहसास से जुड़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ।

फिल्म मेरा साया का ये गीत दोस्तों आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खान के सजाए बोल थे और संगीत मदन मोहन का। अगला नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूं फिल्म पत्थर के सनम का ये बेहतरीन गीत है, लता मंगेशकर की आवाज में बोल सजाए हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गीत ही तो हैं जो हमारे जज्बातों को शब्दों में पिरो करके और बस बयां कर जाते हैं। तेरी अहमियत बयां कर पाऊं इतनी मेरे शब्दों में बात नहीं, तेरी अहमियत बयां कर पाऊं इतनी मेरे शब्दों में बात नहीं, और तू रूह तक बसा है मेरे, तुझे मुझसे अलग कर पाना इतना आसान नहीं।

फिल्म अजनबी का ये नगमा दोस्तों सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के सजाए बोल और संगीत आरडी बर्मन साहब का। अगला गाना जो आपके साथ साझा कर रही हूँ, दाग फिल्म से लिया हमने किशोर कुमार की आवाज और लता मंगेशकर की आवाजों में। म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल हैं साहिर लुधियानवी के।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म ज्वेल थीफ का ये नगमा आपने सुना दोस्तों। बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी के और म्यूजिक दिया है SG बर्मन साहब ने। आइए अब चलें अगले गीत की तरफ। फिल्म वो कौन थी का ये नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। लता मंगेशकर की आवाज में है, बोल है अनजान के और संगीत दिया है RD बर्मन साहब ने।

किसी ने खूब कहा है, अधूरा ही सही पर हमने तुम्हें पाया तो है, अधूरा ही सही पर हमने तुम्हें पाया तो है, लिखने वाले ने लिखा नहीं किस्मत में, मगर जिंदगी ने हमें तुमसे मिलाया तो है।

ये गीत भी कितना अजीब है दोस्तों। कुछ कहने के लिए तो हमेशा ही हमारे पास एक से एक बेहतरीन गीत होते हैं, कुछ बयां करने के लिए, कुछ जताने के लिए, मोहब्बत दिखाने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, हर चीज़ के लिए हमारी बॉलीवुड में एक से एक बेहतरीन नगमे हैं। अब ये गीत भी अपने आप में एक उम्दा मिसाल है उन फनकारों की, जो कुछ ना कहने पर भी, किसी जज्बात को ना बयां करने पर भी एक गीत बना बैठे। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये नगमा बोल सजाए गुलजार साहब ने, म्यूजिक दिया खयाम ने और आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। लता मंगेशकर का ही एक और नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, जो मेरे लिए काफी प्रिय है। फिल्म चुपके चुपके का ये गीत आनंद बख्शी के सजाए बोल और एसडी बर्मन साहब का संगीत। आइए सुनते हैं ये नगमा।

गीतों का सिलसिला बस इसी तरह जारी है। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और संग हूं मैं श्रेयसी। किसी से रूठो तो संभल कर रूठो। जी हाँ जनाब, किसी से रूठो तो जरा संभल कर रूठो। आजकल मनाने का नहीं छोड़ देने का रिवाज है।

फिल्म प्रेम पुजारी का ये नगमा दोस्तों अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, बोल सजाए नीरज ने और संगीत एसडी बर्मन साहब का। और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम रात सुरमई को हमें देना होगा विराम। जल्द मिलने के वादे के साथ मैं श्रेयसी लेती हूँ अब विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि ये फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरी के जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र पर दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला एलपीजी वाहक पोत एमटी सर्वशक्ति, जिसमें भारत के लिए 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है, होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 13 मई को इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Pashchim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal, covering 152 seats, was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas District, West Bengal. Fresh polling will be held on 21st May 2026 across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes is scheduled for 24th May 2026. In its statement, the Commission explained that the decision followed reports of severe electoral offences and large-scale subversion of the democratic process during voting on 29th April 2026. Observer reports highlighted serious irregularities, including tampering with electronic voting machines, intimidation of voters and violations of polling rules. In several booths, ballot unit buttons were deliberately covered with black tape, preventing proper voting. Unauthorized individuals were also found entering polling stations and casting votes on behalf of others. Missing or inconsistent video footage further raised concerns about transparency. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of vote counting. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice B.S. Narasimha and Justice Joymalia Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Dr. R. Balasubramaniam and Dr. Joram Ania on being appointed as full-time members of Niti Aayog. In a social media post, Mr. Modi said their rich experience and deep understanding of various issues will greatly strengthen policy making. He expressed confidence that their contributions will help drive innovation and growth across sectors. The Prime Minister wished them a very productive and impactful tenure ahead. The Government of India has appointed Rohit Jain as the Deputy Governor of the Reserve Bank of India, RBI, according to an official notification released yesterday. Currently serving as Executive Director at the Central Bank, Jain will hold the post for a period of 3 years from the date of assuming charge on or after May 3rd, 2026. And in IPL cricket, Chennai Super Kings defeated Mumbai.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की सागर फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ।

रात की खामोशी में दिल एक ही सवाल दोहराता है, क्या ये धड़कनें सिर्फ मेरी हैं या इनमें तुम्हारा भी कोई राज बसता है। प्यार कभी पूछता नहीं, प्यार कभी पूछता नहीं, वो तो बस महसूस होता है।

मेरे हम सफर, ये रातें गवाह हैं हमारे साथ की। चांद भी ठहर जाता है जब तुम मेरे करीब होते हो। सफर लंबा हो या छोटा, सफर लंबा हो या छोटा, अगर साथ हो तुम तो हर रास्ता खूबसूरत लगता।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है हम राही। वादा रहा सनम, ये दिल अब सिर्फ तुम्हारा है। हर खुशी हर ख्वाब अब तुमसे ही जुड़ा है। चाहे वक्त बदले या हालात, चाहे वक्त बदले या हालात, ये मोहब्बत कभी कम ना होगी।

हमें कितनी हसरत थी इन राहों में हर मोड़ पर बस उनका ही इंतजार था, और जब वो सामने आए तो लगा जैसे किस्मत खुद मुस्कुरा उठी हो।

मुलाकात जैसी अधूरी दुआ का पूरा हो जाना, और वो पल ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए धड़कन में बस से जाते हैं।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कुछ ही देर के लिए आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना कल सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Pashim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal, covering 152 seats, was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas District, West Bengal. Fresh polling will be held on 21st May 2026 across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes is scheduled for 24th May 2026. In its statement, the Commission explained that the decision followed reports of severe electoral offences and large-scale subversion of the democratic process during voting on 29th April 2026. Observer reports highlighted serious irregularities, including tampering with electronic voting machines, intimidation of voters, and violations of polling rules. In several booths, ballot unit buttons were deliberately covered with black tape, preventing proper voting. Unauthorized individuals were also found entering polling stations and casting votes on behalf of others. Missing or inconsistent video footage further raised concerns about transparency. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of vote counting. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joy Mallya Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Dr. R. Balasubramaniam and Dr. Joram Ania on being appointed as full-time members of Niti Aayog. In a social media post, Mr. Modi said their rich experience and deep understanding of various issues will greatly strengthen policy making. He expressed confidence that their contributions will help drive innovation and growth across sectors. The Prime Minister wished them a very productive and impactful tenure ahead. The Government of India has appointed Rohit Jain as the Deputy Governor of the Reserve Bank of India, RBI, according to an official notification released yesterday. Currently serving as Executive Director at the Central Bank, Jain will hold the post for a period of 3 years from the date of assuming charge on or after May 3, 2026. In IPL cricket, Chennai Super Kings defeated Mumbai Indians by 8 wickets at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai last night. Mumbai Indians had set a target of 160 runs for Chennai Super Kings. Chasing the target, CSK scored 160 for the loss of 2 wickets in 18.1 overs. Earlier, MI made 159 runs for 7 in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है अब प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म सफर से मुकेश की आवाज़ में, गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत, फिल्म दिल तुझको दिया से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार राजेश रोशन और संगीतकार भी राजेश रोशन।

अभी गीत आपने सुना सहरा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार रामलाल और गीतकार जो हैं वो हैं हसरत जयपुरी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम अरुणिमा को, सुनते हैं अगला गीत फिल्म उपहार से मुकेश की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म मौसम से लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में, संगीतकार मदन मोहन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और प्रोग्राम है अरुणिमा। और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम, अरुणिमा को सुनते हैं अगला गीत फिल्म मेरा नाम जोकर से। जिसे अपनी आवाज से सजाया है मुकेश ने, और गीतकार और संगीतकार है शंकर जयकिशन, गीतकार हजरत जयपुरी।

और छोड़ी जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। मैं आपसे मिलूंगी 5:10 पर लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी, और आप इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को और कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये गीत है फिल्म सपने से, और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है हिमा असर देसाई ने और मलाइसिया वासुदेरा ने। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार AR रहमान। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान

0: होगा, मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि ये फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर से इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों को उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरे की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उससे विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 202 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने रोहित जैन को रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस प्यारे से भजन के साथ।

जीवन में कभी धूप है तो कभी छांव है, और उस धूप और छांव में हमें वो पल ढूंढना है जिसमें नए तराने छुपे हों, जिसमें जीवन के परेशानियां, जीवन की दुख तकलीफ से निकलने का तरीका छुपा हो।

आजकल की भागदौड़ में खुद को कभी खोना नहीं है, अपने सपनों से कभी समझौता भी नहीं करना है। नई सुबह में नए सपने, और जो सपने रह गए हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करनी है।